0: सेवा, ईसीजी, वीडियो एक्सरे तथा प्रयोगशाला जाँच,
1: रगत सम्बन्धी मृगौला, मोटर कलेजोको जाँच, थाइरोइड जाँच,
0: दिशा पिसाब खकार परीक्षण गरिनुका साथै वीर्य जाँच र परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्याहार सेवा सम्बन्धी परामर्श तथा अस्थायी साधन वितरण,
2: विशेष मेसिनद्वारा नवजात शिशुको जन्मजात श्रवण समस्याहरूको परीक्षण तथा पहिचान, जिल्लाकै क वर्गको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन।
1: अन्य थप जानकारीको लागि
2: सम्पर्क नम्बर 0 4 4 12 0 20।
0: भोलिखेल अस्पताल, दोलखा अस्पताल, दोलखा।

0: ए धनिया
1: कहाँ गए रे?
0: आइसक्रीम वाला पनि छैन बे। ए धनिया सारा आइसक्रीम वाला उठाएछ?
1: हाँ हामी बुझिराछ। अरे हामी बर्बाद भइगो रे।
0: ए धनिया ए धनिया ए धनिया
1: कहाँ गए छ रे?
0: ए धनिया कहाँ गए छ रे?

0: कार्यवाही गरौं।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।